0: 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું, જે સામાન્ય કરતાં 2.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ રહ્યું. જ્યારે લઘુત્તમ ઉષ્ણતામાન 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું, જે સામાન્ય કરતાં 1.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ રહ્યું. સવારે 5:30 વાગે નોંધાયેલું તાપમાન 28.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું તથા વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ 75%. આગાહી છે કે આજના દિવસમાં મહદઅંશે આકાશ વાદળછાયું રહેશે. આ સાથે જ સ્થાનિક હવામાન સમાચાર અહીં પૂરા થયા. બરાબર 6 વાગે સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં વૈષ્ણવી. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है. इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा. इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी. कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा. प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा. इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे. रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई. श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की. भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था. उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था. इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है. भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है. इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है. इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है. देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है. सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है. फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया. इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा. अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले

0: दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર। પ્રસ્તુત કરીએ છીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના।

शिवानंद स्वामी द्वारा लिखित अम्बेवानी आरती आप सांभळी रह्या हता अभराम भगतना स्वरमा। श्रोता मित्रों, आ साथे ज आजनो भक्ति संगीतनो कार्यक्रम अहीं ज समाप्त करीए छीए।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देती है मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जड़ छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: સદાબહાર ગીત કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. હવે સાંભળીએ આવું જ એક સુંદર મજાનું સદાબહાર ગીત, એટલે કે સાગર ફિલ્મનો આ ગીત કિશોર કુમાર અને લતા મંગેશકરના યુગલ સ્વરમાં, આરડી બર્મનનું સંગીત અને જાવેદ અખ્તરના બોલ.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की

0: 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा

0: देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, पैक्ट अनलॉक्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर नियरली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। Sent announces 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. Government to launch a tranche of auction for critical and strategic mineral blocks

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है।

0: आप सबका उमंग कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
0: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ, प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
0: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
1: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
0: जी,
1: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
0: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
1: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
0: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
0: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
0: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
0: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
0: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
0: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
0: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
0: जी।
1: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
0: जी,
1: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओ, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं। जिनकी चर्चा हम करेंगे

0: अगले एपिसोड में।
1: जी
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी।

0: ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
6: और बच्चों, भारत में

0: मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
1: हाँ।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर

0: श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखीं। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ, तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ, बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है?

0: तुम्हारा।
1: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
2: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
3: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
1: प्रणाम महात्मन।
4: जीते रहो पुत्र।
1: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
3: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
4: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
1: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
4: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
3: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
3: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे।

0: उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર, અને હવે સમય થઈ ગયો છે માહિતી સાથે મનોરંજનનો કાર્યક્રમ એટલે કે સવારે સવારેનો। તો પ્રસ્તુત કરીએ છીએ સવારે સવારે।

Da-dum-da-dum-da-dum-da. Da-dum-da-dum-da-dum-da.

0: आदाब। इस उर्दू मजलिस में मैं शब्बीर हाशमी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबार करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू मजलिस में हम रोज़ नए नए लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और शायरी सुनते रहते हैं, तो आज हमारे बीच उर्दू के मशहूर और मारूफ शख्सियत मुजाहिद हादी साहब मौजूद हैं और वो आज अपना एक अफसाना सुनाएंगे। हम उनका अफसाना सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरी ये गज़ल आपके सामने पेश की जाए। तो आइए सुनते हैं एक गज़ल।
1: आता
0: मुजाहिद हादी साहब, ये गज़ल दुआइया है, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से हम कुछ मांग रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इस गज़ल को।
1: इरशाद इरशाद।
0: अमल से मेरे घर को पुर नूर कर दे,
1: अमल से मेरे घर को
0: पुर नूर कर दे,
1: वाह
0: मिले हैं जो गम सारे गम दूर कर दे।
1: वाह क्या बात है, बहुत अच्छे।
0: मुझे ऐसी शोहरत से महफूज रखना जो अपने ही लोगों में मगरूर कर दे।
1: आए, बहुत अच्छे,
0: मुझे ऐसी शोहरत से महफूज रखना जो अपने ही लोगों में मगरूर करते
1: कर दे।
0: हर एक शख्स के काम आने लगूं मैं, हर एक शख्स के
1: काम
0: आने
1: आने
0: लगूं
1: लगूं
0: मैं,
1: मैं।
0: मेरी जिंदगी का यू दस्तूर कर दे, मेरी जिंदगी का यू दस्तूर कर दे।
1: वाह बहुत अच्छे,
0: रहे बेवजह दुश्मनी जिसके दिल में, उसे दोस्ती को ही मजबूर कर दे,
1: आए आए
0: उसे
1: क्या बात है।
0: दोस्ती को ही मजबूर कर दे। मुझे सब्र की नेमते यूं अता कर, जो बेचैनियों का वो मेरी दूर कर दे, जो
1: वाह
0: बेचैनियां हैं वो मेरी दूर कर दे। तू खालिक है, राजिक है, हाफिज है मौला,
1: तो
0: तू खालिक
1: खालिक
0: है,
1: है,
0: राजिक है, हाफिज है मौला, तेरी शान में दिल को मसरूर कर दे,
1: वाह
0: तेरी शान में दिल को मसरूर कर दे। इलाही जहां कद्र शब्बीर की हो, मुझे ऐसे लोगों में मशहूर कर दे,
1: बहुत अच्छा,
0: मुझे
1: बहुत
0: ऐसे
1: अच्छा।
0: लोगों में मशहूर कर दे।
1: हाशमी साहब, आपका ये तहत में कलाम तो हमने सुना,
0: जी
1: बहुत अच्छा आप लिखते हैं,
0: जी
1: लेकिन सुना है आप तरन्नुम से भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
0: जी जी जी
1: तो मैं चाहूँगा कि सामीन हजरात को आपका तरन्नुम भी सुनने को मिले, तो एक गज़ल तरन्नुम में भी पेश कीजिए।
0: जी शुक्रिया साहब, मुजाहिद हादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तरन्नुम में पेश करते हैं एक गज़ल।
1: बताओ।
0: मेरी थकन को देख के कुछ ऐसा

0: कुछ ऐसा डर गया। घबरा के साया पेड़ से फौरन उतर
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: गया।
1: बात है, क्या बात है।
0: मेरी थकन को देख कर कुछ ऐसा डर गया। घबरा के साया पेड़ से फौरन उतर गया। और इस शेर पर खास तवज्जो कि
1: जी
0: बिखरे हुए थे टुकड़े तो महफूज था मगर
1: बिखरे हुए थे टुकड़े।
0: बिखरे

0: मैं घर और इस शेर पे भी खास तवज्जो चाहूंगा।
1: जी जी
0: आप
1: बताओ।
0: देखिए फितरत, मैं बताना चाहता हूं इसमें कि जख्मी किया था कांटों ने उस फूल को बहुत,
1: जी
0: जख्मी किया था कांटों ने उस फूल को बहुत,

0: बहुत अच्छा।
1: बर्बाद उम्र भर रहा फनकार तो, मगर ये कम नहीं कि फन का मुकद्दर सवर गया। और हमदर्द बन के उसने की कुछ इस तरह मदद, हमदर्द बन के उसने की कुछ इस तरह

0: कुछ ऐसा डर गया। आपकी ख्वाहिश थी तरन्नुम से सुनने की, मैंने आपके सामने तरन्नुम से पेश किया। मैं चाहता हूं कि अब मैं आपका जो अफसाना है उसका क्या उन्वान है और किस मौजू पर है, मुजाहिद हादी साहब से हम सुनते हैं।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसाने का उन्वान है हसरत।
0: वाह,
1: शाम ढल रही थी, सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर चुका था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगा था। दरवाजे पर बैठी बूढ़ी अम्मा अपनी कमजोर आंखों से गली की तरफ मुसलसल देख रही थी।
0: जी
1: बढ़ती हुई तारीकी के साथ उनकी निगाह भी धुंधलाती जा रही थी, मगर इंतजार की रोशनी अब भी उनकी आंखों में बाकी थी। चार

चारपाई पर नीम दराज जमाल चचा ने खांसते हुए आवाज दी, अब अंदर आ जाओ, वो आज भी नहीं आएगा। अम्मा ने जैसे आवाज सुनी ही न हो कुछ देर तक उसी तरफ देखती रही, फिर एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठकर अंदर चली आई। जमाल चचा धीरे से बोले, खुद को इतना मत थकाया करो, इंतजार भी आखिर कब तक। अम्मा खामोश रही, उनकी खामोशी में बरसों का दुख छुपा हुआ था।

अचानक गांव में बच्चों का शोर बुलंद हुआ। चांद नजर आ गया, कल ईद है। पूरा गांव खुशी से भर गया। हर घर में चराग रोशन थे, कहीं मीठी सेवैया बन रही थी, कहीं तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मोहल्ले के बीचों बीच लालटेन के नीचे बच्चे जमा होने लगे। थोड़ी देर बाद एक कुर्सी रखी गई। किसी ने आवाज लगाई, खामोश हो जाओ, खान साहब आ रहे हैं। सफेद लिबास पहने, मुंह में पान दबाए, खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। वो बच्चों से खास मोहब्बत रखते थे। आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ईद मुबारक बच्चों। तमाम बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, ईद मुबारक दादा जान। खान साहब ने हर बच्चे से मुसाफहा किया और सबको एक एक नोट दिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी फैल गई। दरवाजे पर बैठी अम्मा ये सब देख रही थी, मगर उनकी नजरें बच्चों के हुजूम में किसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। वो चेहरा जो बरसों से उनकी आंखों से ओझल था। जमाल चचा उनके करीब आए और धीरे से बोले, चलो अंदर चले, खाना तैयार कर लेते हैं। अम्मा खामोशी से उठी, कांपते हाथों से चूल्हे पर रोटियां सेंकने लगी। चूल्हे की आग और एक छोटा सा दिया कमरे के अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस घर की वीरानी किसी रोशनी से दूर होने वाली न थी। जमाल चचा जानते थे कि उनकी बीवी के दिल का दुख किसी बात से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हर रोज उन्हें हौसला देने की कोशिश करते थे। जमाल चचा ने जिंदगी में बहुत सख्त दिन देखे थे। बचपन में वालिद का साया उठ गया, कुछ बरस बाद वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने मजदूरी करके जिंदगी गुजारी। वक्त आया तो एक सादा समझदार और मेहनती लड़की से उनकी शादी हो गई। दोनों ने गुर्बत में भी खुशी से जिंदगी गुजारी, मगर कई बरस तक औलाद न हुई। आखिरकार उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम माहिर रखा गया। जमाल चचा खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनका बेटा जरूर तालीम हासिल करेगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान की ताकि माहिर अच्छी तालीम हासिल कर सके। वक्त गुजरता गया और माहिर एक काबिल और तालीम याफ्ता नौजवान बन गया। बूढ़ी अम्मा रोटियां बनाते हुए बार बार माजी में खो जाती थी। पिछले दिनों की यादें उनको सताती थी। उन्हें कभी माहिर का बचपन याद आता, कभी उसके खिलौने, कभी गली में दोस्तों के साथ खेलना, कभी किताब हाथ में लिए खामोश बैठना, तो कभी उसकी शौक हंसी कानों में गूंजने लगती।

माहिर का सबसे करीबी दोस्त समीर था। दोनों हर वक्त साथ रहते थे। समीर निहायत खुश अखलाक, ज़हीन और समझदार नौजवान था। माहिर की वालिदा उसे भी अपने बेटे की तरह चाहती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। जमाल चचा ने दरवाजा खोला तो सामने समीर खड़ा था। हैरत से बोले, अरे बेटा तुम? अंदर से अम्मा ने पूछा, कौन आया है? समीर ने बुलंद आवाज में कहा, चाची मैं हूं समीर। यह सुनते ही अम्मा तेजी से दरवाजे तक आईं। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी लौट आई। उन्होंने समीर को गले लगा लिया और फौरन उसके पीछे नजरें दौड़ाईं। माहिर नहीं आया? समीर ने आहिस्ता से जवाब दिया,

नहीं चाची, मैं अकेला आया हूँ। वो खैरियत से है, उसने आपके लिए एक खत और कुछ तोहफे भेजे हैं। जमाल चचा ने खत खोला और पढ़ने लगे। चंद सतरे पढ़ते ही उनका चेहरा बुझ गया। अम्मा बेचैनी से उन्हें देखती रहीं। क्या लिखा है? जमाल चचा ने खामोशी से खत उनके हाथ में दे दिया। खत में लिखा था, प्यारे अम्मी अब्बा, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मेरी मुलाजमत में तरक्की हो गई है। एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ एक अमरीकी लड़की से शादी कर ली है। वो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली है। मैंने ये फैसला अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए किया है। इस वक्त मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए आ नहीं सकता। जैसे ही मौका मिला, हम दोनों आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए परेशान न हो। आपका प्यारा बेटा माहिर। खत खत्म होते ही अम्मा के हाथ कांपने लगे। कागज जमीन पर गिर गया और वो खुद भी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जमाल चचा और समीर ने उन्हें संभाला, मगर इस एक खबर ने उनके दिल को अंदर तक तोड़ दिया था। उस दिन के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। जमाल चचा भी बाहर से खुद को मजबूत जाहिर करते, मगर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वो अपनी बीवी को तसल्ली देते रहते, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद भी कमजोर होती जा रही थी।

कुछ दिन पहले समीर की माहिर से मुलाकात हुई थी। समीर ने कहा था, चलो इस बार मेरे साथ वतन चलते हैं, तुम्हारे अम्मी अब्बा तुम्हें बहुत याद करते हैं। माहिर ने आहिस्ता से जवाब दिया था, अभी नहीं समीर, तुम जानते हो मैं अभी अपनी जिंदगी संवारने में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले अच्छी तरह अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, फिर अपने वालिदैन की हर तकलीफ दूर करूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो आराम दूँ जिसके वो बरसों से हकदार हैं। समीर ने कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी जरूर पैदा हो गई। वतन वापस आकर उसने माहिर को एक तफसीली खत लिखा। उसमें अम्मा की बिगड़ती हुई सेहत और उनके मुसलसल इंतजार का हाल बयान किया। खत पढ़ते ही माहिर बेचैन हो गया। उसने फौरन चंद दिन की छुट्टी ली और अपनी अहलिया के साथ वतन रवाना हो गया। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो सामने लोगों का एक हुजूम दिखाई दिया। चंद आदमी एक जनाजा लेकर जा रहे थे। माहिर ने करीब खड़े एक बच्चे से पूछा, बेटा किसका जनाजा है? बच्चे ने बेखबरी से जवाब दिया, जमाल चचा की बीवी का। ये सुनते ही माहिर के हाथ से बस्ता जमीन पर गिर गया। उसे यूं लगा जैसे उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो। सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरने ही वाला था कि उसकी अहलिया ने, उसकी वाइफ ने उसे सहारा दे दिया। माहिर बेख्तियार जनाजे की तरफ देखता रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज साथ छोड़ चुकी थी। जिस माँ ने उम्र भर उसकी राह देखी, जिसने हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसकी वापसी का ख्वाब देखा, वो आज खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। माहिर घर के हालात बदलने, अपने वालिदैन को खुशियां देने और उनके लिए बेहतर जिंदगी बनाने की आरजू लेकर सात समंदर पार गया था, मगर लौटते लौटते इतनी देर हो गई कि माँ को एक बार मुस्कुराता देखने की ख्वाहिश उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए हसरत बनकर रह गई।

0: वाह, बहुत खूब मुजाहिद साहब, आपकी हसरत जो अफसाना था बहुत वाकई हसरत भरी थी,
1: बहुत
0: और
1: शुक्रिया।
0: इंतज़ार जो माँ बाप का अपने बच्चों का रहता है वो आपने बहुत बखूबी निभाया है।
1: बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, मेरा अफसाना तो मुकम्मल हुआ। आपकी जैसे हमने इब्तिदा में गजल सुनी,
0: जी

0: हम चाहते हैं कि एक बार एक और गजल आपकी सुने,
1: जी
0: तो आप कोई गजल और सुना दीजिए।
1: चलिए मेरी गजल के चंद अशआर मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
0: अता हो
1: तकब्बुर करने वाला आदमी
0: जी,
1: अच्छा नहीं होता,
0: हाँ, तकब्बुर करने वाला आदमी अच्छा
1: अच्छा
0: नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: होता। तकब्बुर करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो छूकर आसमां को भी कभी ऊंचा नहीं होता।
0: वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
1: तकब्बुर
0: अच्छा।
1: करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो छूकर आसमां को भी कभी ऊंचा
0: ऊंचा
1: नहीं
0: नहीं
1: होता।
0: होता,
1: और किसी को बख्श देना ही बड़ेपन की अलामत है,
0: वाह,
1: किसी को
0: बख्श
1: बख्श देना
0: देना,
1: ही बड़ेपन की अलामत है। यहाँ पर आदमी झुक कर के भी छोटा नहीं होता,
0: वाह,
1: यहाँ
0: बहुत
1: पर
0: अच्छा।
1: आदमी झुक कर के भी छोटा नहीं होता। और बनाऊं भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, हारी साहब,
0: जी, आता हो
1: बनाऊं
0: बनाऊं,
1: भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, ऐ मेरे दिल मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं
0: आह,
1: होता।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
1: बनाऊं
0: अच्छा।
1: भी अगर तस्वीर तो कैसे बनाऊं मैं, ऐ मेरे दिल मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं होता। और तेरी हर बात पर हो जाता है महफिल में हंगामा,
0: तेरी
1: तेरी हर बात पर हो जाता है महफिल में हंगामा। मैं होता हूं अगर बर्बाद तो चर्चा नहीं होता, मैं होता हूं अगर बर्बाद तो
0: चर्चा नहीं
1: चर्चा नहीं
0: होता।
1: होता। ये एक मुकम्मल गजल थी। आइए एक गजल और मैं पेश करता हूं आप
0: आता हो
1: उसे।
0: आता हो
1: जिसमें गम हो छिपे वो खुशी छोड़ दी,
0: जिसमें गम हो छुपे,
1: वो खुशी छोड़ दी,
0: वाह,
1: दिल दुखाए जो दिल लगी छोड़ दी,
0: हाय हाय हाय,
1: दिल दुखाए जो दिल लगी छोड़ दी। और
0: बहुत अच्छा।
1: गुफ्तगू में जहां कैद हो दुश्मनी,
0: गुफ्तगू में,
1: गुफ्तगू में जहां कैद हो दुश्मनी, हमने ऐसी सभी दोस्ती छोड़ दी,
0: वाह वाह,
1: हमने
0: बिल्कुल,
1: ऐसी सभी दोस्ती छोड़ दी। और सूखे पत्तों से मिलने लगा जब सुकून,
0: सूखे पत्तों से मिलने लगा जब
1: खास तवज्जो
0: सुकून।
1: चाहूंगा कि
0: जी,
1: सूखे
0: जाता हूं।
1: पत्तों से मिलने लगा जब सुकून, शाख फूलों भरी और हरी छोड़ दी।
0: आह, बहुत अच्छा,
1: सूखे पत्तों से मिलने लगा जब सुकून, शाख फूलों भरी और हरी
0: हरी
1: छोड़
0: छोड़
1: दी।
0: दी।
1: जिसके अंजाम की खुद खबर ही नहीं, जिसके अंजाम की कुछ खबर ही नहीं, हमने उम्मीद वो अजनबी छोड़ दी,
0: वाह,
1: हमने उम्मीद वो अजनबी छोड़
0: छोड़
1: दी।
0: दी।
1: और उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें,
0: उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें,
1: उन उजालों की चाहत नहीं अब हमें, चांद क्या चीज है चांदनी छोड़ दी,
0: वाह वाह
1: चांद
0: वाह,
1: क्या चीज है चांदनी छोड़ दी। थी किसी की निगाहों में ऐसा असर, थी किसी
0: किसी
1: की
0: की
1: निगाहों
0: निगाहों,
1: में ऐसा असर, भूल कर मैं कदा मैं कशी छोड़ दी,
0: वाह
1: भूल
0: वाह,
1: कर मैं कदा
0: बहुत अच्छे,
1: मैं कशी
0: बहुत
1: छोड़
0: अच्छे।
1: दी। और शेर होते हैं शब्बीर कहते नहीं,
0: शेर
1: शेर
0: होते हैं
1: होते हैं
0: शब्बीर,
1: शब्बीर कहते नहीं, फिर एक ऐसे कहूँ शायरी छोड़ दी, फिर एक
0: आय आय,
1: ऐसे
0: सच्चाई पर
1: कहूँ
0: मबनी शायरी।
1: शायरी छोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत मुबारक।
1: और मैं चाहता हूँ कि हादी साहब, अगर आपके पास भी एक गज़ल है तो आप, कहानी तो अफसाना तो आपने लिखा ही, अगर कोई एक अच्छी सी गज़ल है छोटी तो आप ज़रा पेश करिए।
0: जी, एक मतला और चंद शेर पढ़ के अपनी बात मुकम्मल करूंगा।
1: इरशाद
0: गजल का मतला है,
1: इरशाद
0: जब जब ख्याल यार ने छेड़े हैं दिल के तार, जब जब ख्याल यार ने छेड़े हैं दिल के तार, निकली कभी गजल तो कभी आंखें अश्कबार।
1: वाह।
0: मत पूछ अपने बाद दीवाने का हाल इजहार,
1: मत पूछ।
0: मत पूछ, मत पूछ अपने बाद दीवाने का हाल इजहार, वो बड़बड़ाता रहता है, मत करना प्यार व्यार,
1: वाह वाह, क्या
0: वो
1: बात,
0: बड़बड़ाता रहता है,
1: मत करना
0: मत
1: प्यार।
0: करना प्यार व्यार। तारीख शब में तारे भी बेनूर हो गए,
1: जी
0: तारीख शब में,
1: तारे भी,
0: तारीख शब में तारे भी बेनूर हो गए, निकला हिजाबे जुल्फ से जब हुस्ने शोलाबार,
1: वाह
0: निकला हिजाबे जुल्फ से जब हुस्ने शोलाबार, कुछ फसले नौ बहार का फूलों पे था करम,
1: कुछ फसले
0: कुछ
1: नौबहार
0: कुछ
1: का।
0: फसले नौ बहार का फूलों पे था करम, कुछ मेरे हुस्ने यार ने बख्शा उन्हें निखार,
1: वाह,
0: कुछ मेरे हुस्ने यार ने
1: बख्शा उसे।
0: बख्शा उन्हें निखार। हादी जो जुल्फ यार से लेती हैं खुशबुए, मक्ते का शेर है।
1: अच्छा
0: हादी, हादी जो जुल्फ यार से लेती हैं खुशबुए, करती है वो हवाएं गुलिस्तां को मुश्कबार,
1: वाह वाह
0: करती हैं वो हवाएं गुलिस्तां
1: गुलिस्तां
0: को
1: मुश्कबार,
0: मुश्कबार।
1: वाह वाह। आइए दोस्तों, आज उर्दू मजलिस में आप मुजाहिद हादी और इस नाचिज़ शब्बीर हाशमी को आपने सुना। मुजाहिद हादी की कहानी।

कहानी बहुत अच्छी लगी और हमारा शेर भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस मजलिस में मैं शब्बीर हाशमी आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आज का इस प्रोग्राम का अहतमाम पज़ीर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।

बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर हाशमी और मुजाहिद पाशवा साहब का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को अपनी कला, अपने हुनर, अपने फन से सजाया और हमें एक बेहतरीन प्रोग्राम से रूबरू किया। उम्मीद है कि आगे भी आपकी कलम के कमाल से हम लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। और अब हमारे मोहतरम सामीन से रुख्सत लेने का वक्त हो चला है। आपके साथ अगले माह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक दिलकश प्रोग्राम के साथ। तब तक आकाशवाणी को सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं दीपशिका दुर्गापाल लेती हूँ इजाजत।

पापा मेरे आएंगे, चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी

0: Bin.
1: Hi, I'm Mani Bin. Hi, I'm Mani Bin. शकुंतला कांता की बड़ी बहन. मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी. शादी कर, शादी कर, शादी कर. आपको चाहिए शादी कर.
2: और कुछ काम नहीं है क्या?

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हम

0: हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
0: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
0: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
1: विमलेश जी आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
0: जी।
1: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
0: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
1: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
0: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
0: जी।
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी
1: तो विमलेश जी अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
1: जी।
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
0: जी।
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थीं?
0: बिल्कुल होती थीं। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में

0: हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं।

0: में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
3: आह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
2: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
3: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
3: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
3: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी

0: यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान, दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में

0: पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता।

0: इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन

0: और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: हमने जब समझ रहा था NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। આપને જણાવવાનું કે ગઈકાલે અમારા મુખ્ય ટ્રાન્સમીટર ખાતે યાંત્રિક ખામીને કારણે સવારે 8:30 વાગે પ્રાયોજિક કાર્યક્રમ ઉમંગ આપ સાંભળી શક્યા નહોતા, જેનું પ્રસારણ હમણાં જ આપે સાંભળ્યું। આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો। બરાબર 12 વાગે આપ સાંભળશો મુખ્ય સમાચાર।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: Disagreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritising food security, domestic price stability and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India-United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Marking a milestone in bilateral economic relations, the first export consignment under the new Indo-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement was flagged off in Chennai today. The British Deputy High Commissioner to Chennai, Dr. Suttappa Chaudhary, joined the officials from the Directorate General of Foreign Trade to flag off the consignment. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Anand Swaroop, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains. Mr. Swaroop congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement.
1: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
3: President Draupadi Murmu has said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today,

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में जुर्माना फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आइए सुनते हैं लता
1: मंगेशकर की आवाज में बसेरा फिल्म का गीत। गीतकार गुलजार, संगीतकार आर डी बर्मन।

गुलजार का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, घर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का गीत। गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

0: दोस्तों, आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फिल्म का नाम है बेमिसाल, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत RD बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं आशा भोंसले की आवाज में डॉन फिल्म का गीत। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

और दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफी, आर डी बर्मन और साथियों की आवाजों में शान फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से

0: 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता सौदा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है, लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमरीका

0: अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक

तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, 354 दशांश मीटर्स अर्थात 846 किलोहर्ट्ज पर આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. સાંજના 5 થવા આવે છે. અમારી આજની બીજી સભાના કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરીએ. સભાના આરંભે સાંભળીએ દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં શક્તિ સિંહ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी. इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपये से अधिक है.
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर. 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है. 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट

0: आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આજે આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર સાંજના 5:05 થઈ રહી છે. સાંભળીશું અમારા આજે બીજી સભામાં પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની વિગતો અને પોલીસ સમાચારમાં ખોવાયેલ વ્યક્તિ અંગેની જાહેરાત. અત્યારે 5:10 સાંભળીશું ગુલમહોર હિન્દી ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ. લોકસંગીતનો કાર્યક્રમ 5:45 જેમાં આજે મયંક પંડ્યાની હરિકથા ગુજરાતના સંતો એ સાંભળીશું. યુવા દોસ્તો માટેનો કાર્યક્રમ યુવાણી 6:30. 7:11 હિન્દી ગીતોનો કાર્યક્રમ. ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો માટેનો કાર્યક્રમ ગામનો છોરો 7:22.

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। अवल अहम ख़बरूं। काबीना केतिरियुनि अहम योजनाउनि समेत यूपीअ में 6 लेन वारे ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर खे मंज़ूरी ॾिनी। भारत ब्रिटेन वसीअ आर्थिक ऐं वापारु समझौतो अॼु खां लागू। प्रधानमंत्रीअ चयो इन सां भारत जे हारियुनि कारोबारियुनि, सूखियम, नंढनि ऐं विचोलनि उद्योगनि खे नई रफ़्तार मिलंदी। वणज उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दिलजाए ॾिनी। समझौते जे तहत डेयरी उत्पादन, भाॼियुनि ऐं खाद खुराक तेल समेत नाज़ुक ज़रई उत्पाद मुकमल नमूने महफ़ूज़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवामी कल्याण जे लाइ आयुर्वेद में जदीद तरीन तकनीकियुनि खे अपनाइण जो अर्ज़ु कयो। भारत जो मुतहद जमैत सलामती काउंसिल में सुधार जो सॾु। ख़बरदार कयो त सुधार न थियण सां विश्व में इन ॾांहुं अवाम जो विश्वास कमज़ोर थींदो। ख़बरूं तफ़सील सां। मर्कज़ी मंत्रिमंडल अॼु उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय

0: शाही रस्तो 19 ऐं वाराणसी रिंग रोड विच में 46 किलोमीटर खां वधीक लंबे 6 लेन वारे ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर खे मंज़ूरी ॾिनी। इन खे हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल तहत तयार कयो वेंदो। इन सां शहर में अचवञु सहजी ऐं बहितर बणजंदी। नई दिल्लीअ में अॼु काबीना जी बैठक खां पोइ सूचना ऐं नशरियात मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया खे ॼाणायो त इन योजना जी कुल लागत 14,400 करोड़ रुपियनि खां वधीक आहे।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव चयो त मंत्रिमंडल भारत जे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन ऐं पैदावार जे माहौलियाती तंत्र खे मज़बूत करण लाइ 1,27,500 करोड़ रुपियनि जो बजट सां गॾु सेमीकॉन 2.5 खे बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना 62,500 करोड़ रुपियनि जे बजट सां गॾु मोबाइल फोन पैदावार योजना खे बि मंज़ूरी ॾिनी। मंत्रिमंडल ओडिशा ऐं झारखंड जे 4 ज़िलनि में 2 मल्टी ट्रैकिंग योजनाउनि खे बि मंज़ूरी ॾिनी आहे। मंत्रिमंडल आत्मनिर्भर भारत जे लाइ यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 जे लाइ राष्ट्रीय सीड़प नीतिअ खे बि मंज़ूरी ॾिनी। भारत ब्रिटेन वसीअ आर्थिक ऐं वापार समझौतो अॼु खां लागू थियो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ चयो त अॼु खां लागू थियल वसीअ आर्थिक ऐं वापार समझौतो तोड़े समाजिक सलामती समझौतो भारत ब्रिटेन जी भाङे भाईवारीअ में अहम लम्हो आहे। श्री मोदीअ मर्कज़ी वणज ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी सोशल मीडिया पोस्ट वंडींदे इहा ॻाल्हि चई। प्रधानमंत्रीअ चयो त इहो समझौतो भारत जे हारियुनि कारोबारियुनि सूख्यम नंढनि ऐं विचोलनि उद्योगनि खे नई रफ़्तार फ़राहम कंदो ऐं गॾु ई केतिरनि अहम खितनि खे ब्रिटेन जी बाज़ार ताईं नई पहुच हासिल करण में मदद कंदो। भारत ब्रिटेन मुक्त वापार समझौतो अॼु खां लागू थियण ते वणज ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त इहो समझौतो वापार सीड़प ऐं नवाचार जे लाइ नवां रस्ता खोलींदो।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऐं गृह मंत्री अमित शाह भारत ब्रिटेन विच में मुक्त वापार समझौते जे लागू थियण जी साराह कई आहे। ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समाज जे फ़ाइदे लाइ आयुर्वेद में जदीद तरीन तकनीकुनि खे अपनाइण जो सॾु ॾिनो। अॼु नई दिल्लीअ में सुश्रुतम 2026 जे महूरत समारोह खे ख़िताब कंदे राष्ट्रपतिअ चयो त मर्कज़ी सरकार नई शक्तिअ सां गॾु आयुर्वेद ऐं योग खे आलमी सतह ते भरपा कयो आहे। श्रीमती मुर्मू चयो,
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।

भारत ख़बरदार कयो आहे त मुतहिद जमायत सलामती काउंसिल में सुधार न थियण ऐं आलमी जदोजहद जो असराइतो हल न मिलण सां अवाम जो मुतहिद जमायत मां विश्वास घटिजी रहियो आहे। मुतहिद जमायत में मुस्तक़बिल लाइ गणपखवाद खी मुनासिब बणाइण वाबस्त विषय ते वज़राती गोलमेज सम्मेलन में भारत जे दाइमा एफ ज़ी पी हरीश चयो त सलामती काउंसिल विश्व में हलंदड़ छिकताण में सकियारती दख़ल अंदाज़ी करण में नाकाम रही आहे। फिलिस्तीन टिन मुख्य विकास योजनाउनि जी स्थापना जे भारत जे फ़ैसिले जो स्वागत कयो आहे। इन्हनि योजनाउनि में ख़ासि अस्पताल ऐं आर्टिफिशियल लिम फिटमेंट सेंटर ऐं हिकु कारोबारी तरबियत इदारो शामिल आहे। नई दहिली में आयल फिलिस्तीनी सिफारतखाने हिकु बयान में चयो त इहा पधिराई अहिड़े वक़्त में थी आहे जॾहिं फिलिस्तीनी अवाम ख़ासि तौर ते गज़ा पट्टीअ में वेझड़ जे वक़्त में सभ खां गंभीर इंसानी संकट मां हिक जो सामनो करे रही आहे। विदेश मंत्री डॉ एहजय शंकर अॼु बेल्जियम जे ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ जे स्टार्टअप खोजना ऐं नवाचार कमिश्नर सां मुलाक़ात कई। डॉ जयशंकर ॿुधायो त इन दौरान साफ़ सुथरी ऐं सरसब्ज शक्ति तकनीकियुनि में खोजना जे वजहनि ते चर्चा कई वई। आबहवा महकमे अॼु ओडिशा में तेज़ बरसाति जो रेड अलर्ट जारी कयो आहे। उत्तर ओभर भारत बिहार ओलह बंगाल ऐं उत्तराखंड जे कुझु हिसनि में बि सुभाणे ताईं तेज़ बरसाति जा आसार आहिनि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अॼु 130 पॉइंटूं वधी करे 77,185 ते बंदि थियो। होॾां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी बि 26 पॉइंटूं वधी करे 24,079 ते बंदि थियो। CISF जे डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन अॼु जम्मूअ में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जे लाइ सलामती इंतज़ाम जो जाइज़ो वरितो। डायरेक्टर जनरल मुख्य सहूलियतुनि जो मुआइनो कयो ऐं CAPF जम्मू कश्मीर पुलिस फ़ौज ऐं ॿियनि एजेंसियुनि सां गॾु उच सतही सलामती जाइज़ा बैठक जी सिधारत कई। ऐं फीफा विश्व कप में स्पेन कल्ह राति अमेरिका जे टेक्सास में डलास स्टेडियम में खेॾियल पहिरें सेमीफाइनल मुक़ाबले में फ्रांस खे 2-1 खां शिकस्त ॾेई फाइनल में पंहिंजी जाइ पुख़्ती कई आहे। हाणे फाइनल में स्पेन जो मुक़ाबिलो अॼु राति अर्जेंटीना ऐं इंग्लैंड जे विच में थियण वारे ॿिए सेमीफाइनल जी सोभियारी टीम सां थींदो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमे ॾींहुं पंजाब वेंदो। इन दौरान हू साहिब जलंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन जो महूरत कंदो ऐं अमृत भारत स्टेशन योजना जे तहत ॿीहर निर्माण कयल 74 ॿियनि रेलवे स्टेशननि जो वर्चुअल महूरत बि कंदो। आख़िर में अहम ख़बरुनि ते नज़र विझंदासीं। काबीना केतिरियुनि अहम योजनाउनि समेत यूपीअ में 6 लेन वारे ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर खे मंज़ूरी ॾिनी। भारत ब्रिटेन वसीअ आर्थिक ऐं वापार समझौतो अॼु खां लागू। प्रधानमंत्रीअ चयो इन सां भारत जे हारियुनि कारोबारियुनि सूखियम नंढनि ऐं विचोलनि उद्योगनि खे नई रफ़्तार मिलंदी। वणज उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दिलजाए ॾिनी। समझौते जे तहत डेयरी उत्पादन भाॼियुनि ऐं खाध खोराक तेल समेत नाज़ुक ज़रई उत्पाद मुकमल नमूने महफ़ूज़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवामी कल्याण जे लाइ आयुर्वेद में जदीद तरीन तकनीकियुनि खे अपनाइण जो अर्ज़ु कयो। आकाशवाणीअ सां सिंधी समाचारनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो। नमस्ते।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अहमदाबाद वडोदरा केंद्र। आइए सुनते हैं युवा दोस्तों के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी।

अलार्म नहीं बजता, जिम्मेदारियां हल्की होती है और खुशियां बिना वजह अनगिनत होती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ बचपन के दिनों की। अगर अभी अचानक कोई आपसे कहे, चलो बस एक दिन के लिए वापस बचपन में लौट चलते हैं, तो आप क्या करेंगे? शायद बिना वजह ज्यादा सोच ना समझ कर मुस्कुरा देंगे, क्योंकि बचपन के दिन वो दिन थे जब जिंदगी बहुत आसान थी। न कोई बड़ा प्लान, न कोई डर कि आगे क्या होगा। हम दोस्तों से दिल से जुड़े होते थे, किसी से बैर नहीं, झगड़ा होता भी था और 5 मिनट में सुलह भी। चल ना, भूल जा कहकर सब ठीक हो जाता था। ना सोशल मीडिया का दबाव, ना तुलना, ना ये चिंता कि हम काफी हैं या नहीं। आज हम सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचपन आज भी हमारे भीतर बैठा है, बस थोड़ा चुप सा हो गया है। आज हम उसी चुप बैठे बचपन से बात करेंगे और उन लम्हों को याद करेंगे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो हमें सीधे उन गलियों में ले जाता है जहाँ साइकिल थी, घुटने छिले थे और खुशियाँ सस्ती थी। हंसी ठिठोली के संग चलिए सुनते हैं यह गीत, जिसे गाया है रमन महादेवन ने और कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: मेहमान
1: दोस्तों, आप सभी को बचपन से वो कौन सी ऐसी यादें हैं जो आज भी याद आती है? मुझे तो गर्मी की छुट्टियां, मस्ती में मलंग हो अपने दोस्तों के संग सितौलिया खेलना और वो बेवजह की हंसी। सबसे बढ़िया बात तो ये कि कल की बिल्कुल परवाह ना करना। वो मासूमियत भी याद आती है जब खेलते वक्त किसी के घर का कांच टूट जाता और फिर भय से चुप्पी छा जाती थी। होमवर्क नहीं करने पर टीचर का डर सताता था। आज जब वो सब याद करती हूँ तो लगता है बेवजह ही इतना डर रहे थे। आइए दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी है सहिष्णा अयला सोमायाजुला, जो हमें सफलता के स्तंभ यानी अनुशासन और नियंत्रता के ऊपर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगी।
2: नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं आपसे कोई भारी भरकम फिलॉसफी या ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। आज मैं बस दिल से बातचीत करना चाहती हूँ, जैसे हम चाय पे बैठ के करते हैं ना, बस वैसे ही दिल से दिल की बात। आज मैं आपको आपकी ही कहानी सुनाने आई हूँ। आज का हमारा विषय है अनुशासन और निरंतरता, सफलता के दो अटूट स्तंभ। यह दो शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इन्हीं दो शब्दों के अंदर सफलता का पूरा राज छुपा है। दोस्तों, आप में से कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? कोई IAS बनना चाहता है, कोई CA CMA, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो कोई नाम, पहचान और सम्मान। सपने सबके पास है, पर सवाल यह है, क्या हमारी आदतें भी हमारे सपने जितनी बड़ी है? अब पहले बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि कोई डंडा लेके खड़ा हो। अनुशासन का मतलब है जो काम जरूरी है वो काम समय पे करना, चाहे मन हो या ना हो। सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो, पढ़ना है, काम करना है। दूसरी आवाज कहती है बस 10 मिनट और, या फिर आज रहने दो, कल से पक्का। जो अनुशासन का पालन करता है वह पहली आवाज सुनता है, और जो नहीं करता वह बहाने बनाता है। अनुशासन एक आदत है, और आदत एक दिन में नहीं बनती। सोचिए अगर जिंदगी में अनुशासन ना हो तो क्या होगा? समय पे उठना नहीं, समय पे काम नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है, समय बर्बाद होता है, और फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। पर सच यह है, किस्मत अक्सर मेहनत का इंतजार कर रही होती है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो सिर्फ मैच नहीं खेलता, वह अपने रोज के अनुशासन का इम्तिहान देता है। रोज अभ्यास, रोज समय पर सोना, रोज सही भोजन, यही अनुशासन उसे विजेता बनाता है। अनुशासन यानी खुद के साथ ईमानदारी, कोई देख रहा हो या ना हो, आप सही काम कर रहे हो, यही अनुशासन है। जब मोबाइल कहे बस 5 मिनट और आपका लक्ष्य कहे आज पढ़ना जरूरी है, तब लक्ष्य की बात सुनना अनुशासन कहलाता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरा कल बेहतर

आएगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। चलो अनुशासन की बात थोड़ी आराम से करते हैं। मैं कोई नियमों का लिस्ट नहीं देने वाली, बस वही बात करूंगी जो सच में काम आती है। आज बस इतना तय करो, मैं रोज 20 से 30 मिनट अपने लक्ष्य को दूंगा या दूंगी। अनुशासन तब आसान हो जाता है जब काम का समय तय होता है, जैसे पढ़ाई का एक तय समय और सोने उठने का एक तय समय। जब समय तय होता है तो दिमाग बहाने कम बनाता है। मोबाइल से दोस्ती कम करो। मोबाइल बुरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा भी नहीं बनना है। सच कहूँ, मोबाइल नहीं, हमारा कंट्रोल कमज़ोर होता है। छोटा सा काम करो, पढ़ते समय मोबाइल दूर रखो, साइलेंट नहीं बस दूर। अनुशासन आधा वहीं से आ जाएगा। खुद को शाबाशी दो। अगर आज आपने तय किया हुआ काम कर लिया तो खुद से कहो शाबाश, अच्छा किया, क्योंकि अनुशासन

सोते समय मोबाइल दूर रखो, साइलेंट नहीं बस दूर। अनुशासन आधा वहीं से आ जाएगा। खुद को शाबाशी दो। अगर आज आपने तय किया हुआ काम कर लिया तो खुद से कहो शाबाश, अच्छा किया। क्योंकि अनुशासन डर से नहीं प्यार से टिकता है। दिन की शुरुआत अगर अनुशासन से हो जाए तो पूरा दिन आसान हो जाता है। समय पे उठना, बिस्तर ठीक करना, 10 मिनट शांत बैठना, छोटी जीत बड़ा आत्मविश्वास। यदि मन में यह सवाल आए कि खुद को कैसे आत्मविश्वास में रखूं, तो खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। डांटो मत, समझाओ, चल आज थोड़ा कर लेते हैं, तो आखिर शुरू कहाँ से करूं? आज से, आज जल्दी सोने की कोशिश, आज 15 से 20 मिनट फोकस, आज खुद से किया छोटा वादा पूरा। बस आज का ख्याल रखो, कल अपने आप संभल जाएगा। चलो आज थोड़ी अलग बात करते हैं। अनुशासन को लोग पढ़ाई और काम से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है अनुशासन का सबसे गहरा रिश्ता स्वास्थ्य से भी है। क्योंकि हमारा शरीर हर दिन की आदतों से बनता है, कभी कभी की कोशिशों से नहीं। जैसे एक दिन सलाद खाने से स्वास्थ्य नहीं बनता, एक दिन व्यायाम करना फिटनेस नहीं देता, लेकिन रोज का छोटा ध्यान बड़ा फर्क लाता है। प्यास लगने पर पानी पीना ठीक है, लेकिन समय समय पर पानी पीना बेहतर है। यह भी अनुशासन है, अपने शरीर की जरूरत समझना। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी अनुशासन चाहता है। रोज थोड़ा शांत बैठना, खुद से अच्छा बोलना, तुलना से दूर रहना, यह सब मानसिक स्वास्थ्य का अनुशासन है। अपने शरीर और मन की रोज देखभाल करना भी अनुशासन कहलाता है। इसीलिए थोड़ा अनुशासन अपनाइए और खुद से प्यार कीजिए। अनुशासन आपने समझ लिया, अब सवाल यह है, शुरू तो कर लिया पर रोज कैसे निभाए? यही पर निरंतरता काम आती है। निरंतरता का मतलब है रोज थोड़ा करना, लेकिन कभी रुकना नहीं। बहुत से युवा जोश में शुरुआत करते हैं, पहले हफ्ते पूरा टाइम टेबल, दूसरा हफ्ते ढील, तीसरे हफ्ते सब गायब। इसे निरंतरता नहीं कहते, इसे एक्साइटमेंट कहते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो युवाओं ने एक परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहला रोज 3 घंटे पढ़ता था, धीरे शांत लगातार। दूसरा कभी 8 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं। परिणाम क्या हुआ? पहला युवक सफल हुआ। दूसरा बोला, यार वो तो बहुत तेज था। नहीं दोस्तों, वह तेज नहीं था, वह निरंतर था। रुक जाना गलत नहीं है, रुक कर छोड़ देना गलत है। अगर थक जाओ तो आराम करो, लेकिन वापस आओ। यही निरंतरता है। छोटे छोटे रिमाइंडर बना लीजिए, जैसे कैलेंडर में टिक करना, डायरी में एक लाइन लिखना, मोबाइल अलार्म आदि। खुद के लिए किए गए यह भी एक प्रयास है। जिंदगी में ऐसे भी दिन आते हैं जब मन नहीं करता, शरीर थका हुआ होता है और आत्मविश्वास भी कमजोर लगता है। ऐसे समय में निरंतरता हमें याद दिलाती है कि आज थोड़ा करना भी काफी है। आज अगर हमने बस 5 मिनट दिए तो भी हमने हार नहीं मानी। रोज की यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आदत बन जाती है और वही आदतें आगे चलकर हमारी पहचान बनती है। युवाओं के लिए निरंतरता सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ तेज है। रील्स तेज है, रिजल्ट तेज है और तुलना उससे भी तेज। हम चाहते हैं कि आज शुरू करें और कल नतीजा मिल जाए, लेकिन जिंदगी रील की तरह नहीं चलती। यहाँ असली बदलाव रोज की मौजूदगी से आता है। आज अगर मन नहीं कर रहा फिर भी किताब खोल ली, आज अगर थकान है फिर भी 5 मिनट खुद पर काम कर लिया, यही निरंतरता है। हर दिन पूरा जोश जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन जुड़ा रहना जरूरी है। निरंतरता हमें सिखाती है कि गिरना असफलता नहीं है, असली असफलता है कोशिश छोड़ देना। जो युवा हर हाल में खुद से जुड़ा रहता है, वही धीरे धीरे अपने सपनों की करीब पहुंचता है। आज का युवा बहुत तेज है। हम सीखते भी तेज हैं, सोचते भी तेज हैं और सपने भी बहुत बड़े देखते हैं। लेकिन एक चीज है जिससे हमें जल्दी परेशान हो जाते हैं, वह है इंतजार। हम चाहते हैं आज पढ़े और कल पास हो, आज मेहनत करे और कल पहचान मिले, आज कोशिश करे और दुनिया तुरंत तारीफ करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और यही से निरंतरता की परीक्षा शुरू होती है। निरंतरता कहती है, आज भी आओ, आज मन नहीं कोई बात नहीं, बस 5 मिनट दो,
आज

0: आत्मविश्वास कम है, कोई बात नहीं, बस किताब खोल लो। निरंतरता पूरे जोश की नहीं, पूरे सच्चाई की मांग करता है। निरंतरता कोई कठिन शब्द नहीं, कोई डराने वाली सीख नहीं, बस उस एहसास की बात जिसे हर छात्र कभी ना कभी गुजरता है। छात्र होना आसान नहीं होता, कभी सिलेबस का बोझ, कभी रिजल्ट का डर, और कभी खुद से तुलना, और सबके बीच पढ़ाई से मन हटने लगता है। कभी किताब खोलते हैं तो मन कहता है कल से पढ़ेंगे, कभी पढ़ते हैं तो मन पूछता है इतनी मेहनत से होगा क्या। यही तो वह पल है जहाँ ज्यादातर छात्र टूट जाते हैं, लेकिन यही से निरंतरता शुरू होती है। निरंतरता कहती है आज पूरा मत पढ़ो, बस शुरू करो। आज अगर एक चैप्टर भारी लग रहा है तो 2 पेज पढ़ लो। आज अगर दिमाग थका है तो 10 मिनट रिविजन कर लो। सोचो, एक छात्र रोज 30 मिनट पढ़ता है, दूसरा छात्र सिर्फ परीक्षा से पहले। पहले को डर कम लगता है, दूसरे को रातें भारी लगती है, कई बार रिजल्ट मेहनत के मुताबिक नहीं आता, और तब मन कहता है सब बेकार है। लेकिन याद रखना, एक रिजल्ट पूरी क्षमता तय नहीं करता, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई लक्ष्य हो, निरंतरता ही आपको आगे ले जाती है। जब आप हर रोज मेहनत करते हो तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। हर दिन थोड़ा समय निकालो अपने लक्ष्य के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन रुको मत, सफलता मिलेगी, बस लगे रहो। आज हर छात्र मेहनत करना जानता है, कोई यह नहीं कहता मुझे मेहनत नहीं करनी, लेकिन मुश्किल यह आती है मेहनत को रोज निभाने में। अक्सर हम ऐसा करते हैं, एक दिन बहुत जोर से पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं, और फिर खुद को दोष देते हैं, मुझ में निरंतरता ही नहीं है। लेकिन सच यह है दोस्तों, मेहनत बिना निरंतरता थकान बन जाती है, और निरंतरता बिना मेहनत आदत बनकर रुक जाती है। सफलता तब आती है जब मेहनत और निरंतरता दोनों साथ चले। अनुशासन दिशा देती है और निरंतरता गति देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो युवा सिर्फ नियम बनाता है पर निभाता नहीं, वह वही का वही रह जाता है, लेकिन जो युवा नियम बनाकर उन्हें रोज निभाता है वही आगे बढ़ता है। सोचो, सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी जाती है, कोई एक छलांग में ऊपर नहीं पहुंचता, आप भी अपनी सीढ़ी पर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, अनुशासन और निरंतरता सिर्फ नियम या आदतें नहीं, बल्कि आपकी सफलता के 2 सबसे मजबूत स्तंभ है। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा या करूंगी, मैं अपनी मेहनत और आदतों को ढीला नहीं होने दूंगा या दूंगी, और मैं रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी। क्योंकि याद रखो, वही युवा जो अनुशासन और निरंतरता के साथ चलता है, वही सितारा बनता है, वही मिसाल बनता है, और वही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है। आज से ही कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम पर हर दिन, और देखो एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। हम निरंतरता और अनुशासन का पाठ कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से भी सीख सकते हैं। जैसे आप सबने APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा ना, वह हर दिन नए विचारों और सीख में लगे रहते थे और अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारी अनुशासन से निभाते थे। उसी तरह स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने उत्पाद को बार बार नई दिशा देने और लगातार अभिनव लाने की आदत बनाई। अपने दृष्टि के प्रति इतने अनुशासित थे कि उन्होंने कई बार आसान रास्ते छोड़ दिए और पूरी मेहनत अपनी टीम और उत्पाद में लगाई। यह सब उदाहरण से हमें एक चीज जरूर पता चलती है कि अपनी पढ़ाई और छोटे छोटे लक्ष्य में भी यही फोकस और निरंतरता रखना चाहिए। तो उठो, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ और अपनी मेहनत से अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हें असाधारण बनाएगा। तो युवा मित्रों, अनुशासन और निरंतरता, इन दोनों को अपना मित्र बना लो, लगातार चलते रहो, सफलता निश्चित है।
1: तो चलिए थोड़ी देर के लिए पहाड़ों की ठंडी हवाओं की तरफ ले चलते हैं और अपने इन युवा मित्रों से उनके सरपास के ट्रैक का रोमांचक अनुभव कैसा रहा वह जानते हैं।
2: मेरा नाम दीपिका है, मैं हरियाणा से आई हूँ। फिलहाल मैं YHAI के बेस कैंप में हूँ। हम अपना सरपास का ट्रैक पूरा करके आए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ उसके लिए। हमारा एक्सपीरियंस सरपास को लेके बहुत अच्छा रहा है। आई वुड रादर से कि ये

0: इजी तो नहीं है, बिगनर फ्रेंडली नहीं है, बट इट इज़ वेरी एडवेंचरस एंड वेरी थ्रिलिंग. और आई वुड हाईली रिकमेंड एनी वन हु इज़ फिजिकली फिट शुड गो ऑन सरपास. आप कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे लाइक स्नो स्ट्रेच माउंटेन्स एंड इट विल बी सच अ ब्यूटिफुल व्यू. यू विल बी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय दैट एंड यू विल बी अमेज्ड बाय लुकिंग एट द माउंटेन्स. तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जाइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए. इट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू विल कम आउट एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम देयर. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द आकाशवाणी. आकाशवाणी के 90 ईयर्स सेलिब्रेट हुए हैं. उसके रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इतने टाइम से चलता आ रहा है. वी आर सो यंग. हमारे पेरेंट्स हैं एंड इवन बिफोर द जनरेशन्स वो हमें यू नो सबको मार्गदर्शन दिखाता है लाइक फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज एज वेल और दूसरे सोर्सेज लाइक एजुकेशन पास करना या किसी भी रिगार्डिंग. तो हाईली हाईली थैंक यू फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: तो मेरा नाम सव्यसाची शेखर है. मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ. वाई जे के साथ भी मेरा पहला ट्रैक था. मेरी एंटायर लाइफ में ये मेरा पहला ट्रैक था. और जो भी इस ट्रैक पे आना चाहता है दो तीन बात समझ के आए कि ये ट्रैक बहुत ही फिजिकल डिमांडिंग नेचर का है. तो अगर आप यहाँ पे ट्रैक करने आ रहे हैं आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट एक महीने की आपके पास फिजिकल ट्रेनिंग हो. क्योंकि मेरा खुद का वेट अभी 120 किलो है. मेरी हाइट 6'1" है. पर जब मैं नीचे डाउन हिल आ रहा था तब मुझे पता चला था कि फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपकी एज मैटर नहीं करती, आपकी फिटनेस मैटर करेगी. तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए वरना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. और अगर आप अच्छे से एक्लिमेटाइज नहीं करेंगे अपने आप को तो उसकी वजह से आपको ऊपर जाने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगी. और अगर आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें और उसी के बाद आप इस ट्रैक पे जाएं. जो भी यूथ आगे ट्रैकिंग करने वाला है मैं उसको यही एडवाइस करूंगा कि आप ट्रैक कीजिए. आपको एक अलग एक्सपीरियंस पता चलेगा. अगर आप साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से हैं, नॉर्थ से तो खैर आप कर ही चुके होंगे, ईस्ट से हैं या वेस्ट से हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि एक बार आप यहाँ पे आएँ. क्योंकि जो नेचर में आपको सीखने को मिलेगा वो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा. आकाशवाणी अब 90 ईयर अपना सेलिब्रेट कर रहा है. मेरे दादाजी सुनते आए हैं, मेरे पापा सुनते आए हैं रेडियो, अब मैं भी सुनता हूँ. तो आकाशवाणी सबसे पहला रेडियो ब्रॉडकास्टर है हमारी कंट्री का. और जब से चालू हुआ है तब से जगह जगह न्यूज़ पहुँचाने का काम आकाशवाणी ने किया है. अराउंड 20+ लैंग्वेजेस में आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट होता है. अभी हम गुजरात में, मैं गुजरात का हूँ तो गुजरात में भी 3 लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में. तो जब से आकाशवाणी ने सुनना चालू किया है तब से ये पता चला है कि न्यूज़ कितनी प्रकार की होती है, एंटरटेनमेंट कैसे होता है. सबसे पहला सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आकाशवाणी ही था हमारा. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आकाशवाणी फॉर 90th बर्थ एनिवर्सरी. थैंक यू.
2: नमस्कार, मैं हिमानी, मैं हरियाणा से हूँ और मैं सरपास का ट्रैक करके आई हूँ. यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बेस कैंप कुल्लू से बात कर रही हूँ. सरपास का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अलग रहा है. मैं जनरली ऐसे जिम विम में ट्रेन करती हूँ पर इससे पता चला कि सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी आपकी वो स्थिति चेक करता है. कि शारीरिक तो एक लेवल पे है ही कि आप कितने फिट हो, वो तो है ही कि आप किसी ट्रैक पे चढ़ रहे हो उतर रहे हो, पर आप मेंटली कितने फिट हो उस बात पे जेन्युइनली ये निर्भर करता है. कि अगर आप सही तरीके से आपकी मानसिक स्थिति सही है, हौसला मजबूत है, तो क्योंकि वो बहुत लंबा चलवाते हैं कि सुबह से अब कुछ थोड़ा खाया फिर चलते रहो. एक टाइम के बाद आपका फिजिकल स्ट्रेंथ तो ये हो ही जाता है कि बस हो गया. पर जो मानसिक के दिमाग से जो कि नहीं करना है वो यहाँ आके पता चला कि थोड़ा मानसिक स्थिति पे भी काम करने की थोड़ी ज़रूरत है. कि जब ये हो रहा था कि नहीं बस नहीं हो पाएगा, तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मानसिक स्थिति भी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए अभी जाके योगा, मेडिटेशन वो सब करेंगे. और जो सरपास का ट्रैक है उसके लिए मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप आओ तो कम से कम 2-2.5 महीने पहले सारे तरीके की एक्सरसाइज, वो कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ कार्डियो नहीं उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी. कि जब आप चढ़ते हो तो घुटनों का जो वजन लगता है या बैठते हो तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और जैसे ऊपर एक्लिमेटाइज होने के लिए जो सांस फूलता है उसके लिए आपको कार्डियो भी ज़रूरी है. तो दोनों का बैलेंस बना के कि रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो दोनों ज़रूरी है. बाकी तो बहुत ही सुंदर है, जीवन में एक बार तो इसका अनुभव करना ही चाहिए. बहुत ही सुंदर कि हमने स्नोफॉल, बारिश, धूप, गर्म सब एक ही दिन में देखने को मिला. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है. बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन आकाशवाणी को. और हम यही आशा करेंगे कि वो हमें ऐसे ही नॉलेज देता रहे, एंटरटेन करता रहे. बहुत बहुत शुभकामनाएं.
3: तो दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या आप इन बातों से सहमत है? मैं तो ज़रूर सहमत हूँ. बचपन के दिनों में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है और वो हमें बड़े होकर ही पता चलता है. बचपन वापस नहीं आता पर उसकी यादें हमें थोड़ा नर्म ज़रूर बना देती हैं. सच है, खुशियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती. कभी कंचे जीत जाना, कभी टिफ़िन में मनपसंद खाना, और कभी दोस्तों को देखते ही हंसी की एक ठिठोली आ जाना. आज हम सब बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा ना

आदान होना भी जरूरी है। बचपन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को हर वक्त कंट्रोल करना जरूरी नहीं, नियंत्रण लाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस जी लेना ही काफी होता है। इसी भावना के साथ मैं श्रेया थीटे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

0: देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।

0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है।

0: है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम

0: वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition, and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub.
4: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन, श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं, जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था, जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए। चलो घर अने ऑफिस में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए। बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए। जलाशयों में काप दूर करिए। वधु ने वधु वृक्ष

0: हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए। चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए। बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए। जलाशयो मा काप दूर करिए। वधु ने वधु वृक्षो वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस मा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए, रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए, चलो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: હવે સાંભળીએ રામ થેરી ગંગા મેલી ફિલ્મનું આ ગીત।

0: આ તો હિન્દી ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ પ્રસારણ આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં અરુણ કુમાર. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है.
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया. सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं. पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स. सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स. तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है. अभी 10 यूनिट लग चुके हैं. उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है.
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था. दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी. मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी. मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है. इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया. सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा. साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं. उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया. राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे. श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है. इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है. इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा. NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा. डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग

0: हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हेलो हेडक्वार्टर, कैप्टन नीलेश रिपोर्टिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम सेक्टर। आज -35 डिग्री, शून्य से नीचे पारा है सर। सर हम 10 घंटे से डटकर मुकाबला करते हैं सर। 3 जवानों का कुछ पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन 14 घंटे से रुका हुआ है। जी सर, यस सर, 2 जवान शहीद हुए हैं। अभी तक कॉफी आया नहीं है सर, शाम तक आ सकता है सर। गोला बारूद की वेट कर रहे हैं, अभी तक पहुंचा नहीं। हेलीकॉप्टर से शाम तक आ जाए तो जी जी कन्फर्म करके बताता हूं सर। ओवर सर।
1: कोई है नायक गिरी?
2: यस सर, रिपोर्टिंग।
0: लास्ट नायक, कितना स्टॉक है?
2: कल शाम तक चल सकता है, सप्लाई 1 हफ्ते से नहीं आई।

0: वुड की सप्लाई भी नहीं आई। पोजीशन क्रिटिकल। फटे जूते से जवान खराब वेदर में फ्रंट पोजीशन पर दौड़ता है सर। तीसरा रिमाइंडर परसों भेजा है। ओवर।
1: कल रात वायरलेस पर कौन बैठा था? सुनो, 65 फील्ड रेजिमेंट के 7 जवान एवलांच बर्फ के तूफान के चलते लापता है, उनकी कोई खबर?
0: नो सर, सर्च ऑपरेशन चालू है, 2-3 दिन और लग सकता है जी, बहुत बर्फबारी हुई है। अरे हाँ, हेडक्वार्टर को रिमाइंडर भेजना है सर, राशन की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए
1: हाँ
0: तो।
1: हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और तुम जाओ चौकी नंबर 11 को संभालो और हवालदार को यहां बुलाओ।
0: यस सर।
2: रिपोर्टिंग सर, 8 घंटे बीत चुके हैं, सरहद के पास गोलीबारी बंद है, बर्फ के तूफान से काफी नुकसान हो रहा है, रम की डिलीवरी को रिमाइंड भी करवाना है सर।
1: अरे शिंदे, पीने वाले क्या निशाना लगाएंगे, छोड़ ये सब। अरे हाँ हाँ हाँ तेरी तो छुट्टी मंजूर हुई है ना, कब जा रहा है?
2: कल शाम को 4 बजे, कैंप से सुबह 7 बजे पैदल निकलूंगा तो समय से पहुंच जाऊंगा। और सर, आपकी सब पार्टी में वेट कर रहे हैं, प्लीज।
1: अरे मैं तो शराब पीता ही नहीं, तुम्हें मालूम तो है मैं गुजरात से हूं। सुनो, एक बार मैं जर्मनी ट्रेनिंग में गया था, शाम को स्टेज पर से सबकी पहचान देने के वक्त किसी ने मेरी पहचान देते हुए कहा कि देखो जी, ये महाशय उस देश में से आते हैं जहां क्या खाना और क्या पीना वो वे खुद तय नहीं करते हैं, उनकी सरकार तय करती है, और वो भी कानून बनाकर। मेरी तो हालत खराब हो गई, सबको ताज्जुब हुआ कि ये कैसी सरकार है जो नागरिक को खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं देकर सब वो तय करती है।
2: क्या बात करते हो साहब, साहब यहां तो जरूरत से पीते हैं हम, और आज का टेम्परेचर आपने सुना, -32 है। सर्दी से निमोनिया होने में देर नहीं लगती, और ये सब लग्जरी चीजें आप अपने गुजरात में ही छोड़ दीजिए, यहां तो जरूरत से पीना पड़ता है।
1: अच्छा, तुम शुरू करो, मैं एक वायरलेस मैसेज भेजने के बाद शामिल हो जाता हूं। अरे हाँ सुनो सुनो, आज मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल रहूंगा, लेकिन हाँ मेरे लिए वो छोटा सा बनाना, वो तुम्हारे जैसा पतियाला नहीं। हाँ देखो देखो, हमें आदत नहीं है, ये इतनी ठंड है, आप लोग ये बोल रहे हो तो पहली बार, सच कहूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
0: सर क्या बात है, तब तो खुशी की बाढ़ आएगी। अरे सुनो, कैप्टन साहब आज पार्टी में शामिल होंगे।

0: सही पकड़े है।
1: हम उनसे क्या कहेंगे पता है?
0: क्या कहेंगे?
2: हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा।
1: अरे क्या कहेंगे,
0: क्या कहेंगे? अरे लाए हैं बड़ी मुश्किल से संभाल के लाए हैं,
1: सुंदरियों को छोड़कर हम पहुँचे हैं, पहुँचे हैं।
0: अरे लेके आए हैं, लेके आए हैं, बचा के लेके आए हैं।
1: हाय तौबा, जल्दी बताओ क्या लाए हो?
0: तो सुनो सुनो मेरी जाने जा, अरे सुनो सुनो मेरी जाने जा,
2: पूछती हो क्या लाए हो, पूछती हो क्या लाए हो,
0: तो सुनो। हम दिल अपना बचा के,
2: दिल अपना

0: दिनों की छुट्टी है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो।
1: हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, फरमाइए।
0: मेरा किस्सा सुनो।
1: हाँ
0: तब हम बारामुल्ला की पठान चौकी पे थे। सरहद पर तनाव था, लश्कर की मूवमेंट काफी थी, कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता था। हम सभी बेचैनी से लड़ने को तैयार थे,
1: बराबर तैयार थे। लेकिन तब एक शामत आई। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। छुट्टी पे गए हुए सबको वापस फौज के मोर्चे पर हाजिर होने का कमांडर साहब ने फरमान जारी किया। मैंने मिला हुआ तार पढ़ा और क्या लिखा था पता है? लिखा था कि बहन की शादी 6 अक्टूबर को तय हुई है, जल्दी घर पे आ जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरी मां ने कसम भेजी है, जल्दी घर आ जाओ। बोलो, मेरी तो मति मार गई। साहब के पास जाके मैंने हाथ जोड़ा, साहब साहब मेरी बहन की शादी तय हुई है, 6 अक्टूबर को शादी है, ना मत कहना प्लीज, ना मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूं।
0: साहब लोग बड़े चतुर होते, कभी ना नहीं कहते, लेकिन ना का बाप बोलते हैं। वो हंसते हंसते बोले, अरे सुनो, एक काम करो, मैं जो काम बताऊं वो करके आ जाओ तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। बोलो करोगे?
1: हाँ सर करूंगा, आप जल्दी बताइए, मैं जरूर काम करूंगा।
0: तुम्हें मालूम है सरहद पर तनाव है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी है और सबको ड्यूटी पर वापस बुलाया है। ये सब के बावजूद मैं जोखिम उठाता हूं, एक काम करके तुम आओ तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर।
1: हाँ सर, आप जल्दी काम बताइए, मैं करूंगा।
0: शाम होने से पहले दुश्मन की सरहद में घुस के उनकी एक पैटन टैंक लेकर आओ, बस इतना करो।
1: और सुनो यारो, शाम होते होते दुश्मन की एक टैंक मैंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने लाके खड़ी कर दी। अरे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई साहब की तो, और साहब चकरा गए, बड़ी मुश्किल से बोल पाए। बोलो
0: बहादुर, ये कारनामा किया कैसे, जल्दी बताओ।
1: मैंने कहा साहब, इसी तरह हम अपनी भारतीय टैंक दुश्मन के जवानों को भी दे देते हैं, और ये पुराना रिश्ता है। और साहब आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन शाम को सरहद पर महफिल और मुशायरा भी होता है। अरे कभी कभी तो हम मिठाइयां भी बांट के खाते हैं, सरहद पर सभी त्योहार भी साथ में मनाते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है,
0: युद्ध के दौरान सब बंद हो जाता है और हम दुश्मन फिर से दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन का पाठ अदा करते हैं और मरते हैं, सदियों से मरते हैं। दुनिया का यही रिवाज है, कब दोस्त बनना

0: सूबेदार मेजर चक्रवर्ती, कोई हताहत जान हानि का पूरा रिपोर्ट दें।
1: सर, एक शहीद और दो क्रिटिकल इंजर्ड हेलीकॉप्टर लेके अभी अभी आर्मी हॉस्पिटल में गए। दो जवानों को माइनर इंजरी, पांव में गोली लगी है लेकिन सीरियस नहीं है।
0: बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए, यहां भी और वहां भी। चक्रवर्ती, ये बता, हम लोग क्यों लड़ते हैं? हम क्यों नफरत करते हैं उनसे जिसने मेरा या तुम्हारा कोई निजी नुकसान कभी भी नहीं किया है, जिसकी मैंने या तुमने सूरत तक नहीं देखी? फिर भी हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मरते हैं?
1: साहब, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं लड़ते हैं। लड़ाने वाला तो बड़ी ऑफिस में राजधानी के एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं। कमांडो, सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच है इनके पास। लड़ाते वो है, मालिक तय करता है कुत्ता किसे काटे। वो तो हुक्म देने वालों की चौकी करता है। अरे छोड़ो साहब, अब तो 2 साल बचे हैं रिटायर होने में। यह अजीब सिस्टम है, परंपरा है, कोई नहीं बदल सकता। सदियों से चली आ रही है। दुनिया भर में लश्कर का हाल यही है। समझ तो बहुत रहे हैं साहब, दुनिया भर में सिस्टम है, सोच व्यवस्था कोई नहीं बदल सकता। मेरा दुश्मन मैं तय नहीं करता हूं। राजधानी में सुरक्षित बैठे सर्वसत्ताधीश करते हैं। मैं वो इंसान को दुश्मन बनाता हूं जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो भी किसी का बेटा, शौहर, पति, इंसान है। एक सायरन बजने से, युद्ध घोषणा से हम एक दूसरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने बहन की राखी उस हाथ में देखी थी जिसको मैंने एक दिन कॉफिन में रोते रोते तिरंगा लपेटे रखी थी।
0: यहां परंपरा बन चुकी है, शहीदों की परंपरा का नाम दिया है उसे। जो हमें लड़ाते हैं उन नेताओं के बेटों को कभी कॉफिन में किसी ने देखा? आज तक तो नहीं देखा।

0: सब सो रहे हैं। हाँ जी, अभी किसी को नहीं बताऊंगा।
1: कौन? अरे जगदीश, अड़ती रात रे।
2: पर अत्यारे कोण मळवा आवे?
1: अरे अत्यारे मने उठाडवानी शी जरूर हती? जेने मळवो होय तो ऑफिसे आवे।
0: बापूजी, तेमनी वात तो सांभळो। અમદાવાદમાં પહેલીવાર આ લોકો આવ્યા છે। ક્યારના કલાકોથી આપણું જ ઘર શોધતા હતા। આપણા વિનોદભાઈ સોની પાસેથી ટેલિફોન સરનામું લઈને।
1: હા સારું, બોલાવો।
3: નમસ્કાર બાપુજી, આપકો એક સમાચાર દેના હૈ।
1: ક્યા ફિર પાકિસ્તાનને નાપાક હરકત શરૂ કી?
3: બાપુજી, હમ કેપ્ટન નિલેશ કો લાયે હૈ।
1: હે? ક્યા મતલબ? निलेश को लाए हैं? क्या छे, क्या छे? अरे कहाँ है निलेश? सुना नहीं, कहाँ है वो?
0: जी, कॉफिन में लाए हैं।
1: क्या कहा?
3: जी, पूरे मान सम्मान से, तिरंगे में, शहीदोचित आदर से।
1: एक मिनट सांभो, सुनो, रोना धोना बंद करो। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है। देश के लिए प्राण समर्पण किया है। नसीब वाला है, 24 साल का मेरा बेटा कैप्टन निलेश ने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। हमारे पुरखों की 100 पीढ़ियों का नाम रोशन किया है। हमारे खानदान का इतिहास आज सुवर्णमय हुआ है। भारत माँ का लाल सियाचिन मोर्चे से आया है। सुनो, हम सब घर, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और भारत देश आज गौरवान्वित हुआ है। याद रहे, सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा कैप्टन निलेश कुमार आज से देश का हुआ है, शहीद हुआ है, उसको विरोचित विदाई दे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ है। मुझे अभिमान है, ऐसे बेटे घर घर में हो। आज शहीदोत्सव मनाएं। आज भारत माता का बेटा शहीद हुआ है।

0: हेलो, कौन बोले जे?
1: सुनो, हम दिल्ली से आए हैं। कैंप मिलिट्री गैरिसन इंजीनियर की ऑफिस से बोल रहे हैं। सुनो,
0: जी, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
1: हम 5 बजे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पूरा 21 घंटे से। आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर हमें विनोद भाई सोनी से अभी मिला है। नहीं, वो हमारे पास नहीं है। देखो, आप सोसाइटी के बाहर निकलकर कोई मेन सड़क पर आ जाओ, आपसे मिलना जरूरी है। क्या कहा? पालड़ी अंजलि सिनेमा? हम यहां एलिस ब्रिज वीएस हॉस्पिटल से।
0: सीधा रास्ता पकड़ो और इसी सड़क पर अंजलि चौराहे पर मैं खड़ा हूँ। हाँ, निकलता हूँ जी। हाँ, घर पे।

पत के भड़ वीरना अरे रे नसीब होयो वाका।

डरिए परीक्षा करिले विधि ना माजा बाण रे हम हमारा प्राण प्राण विधान प्रीतम धाड़ी देखा जो दसमो द्वार एक कुटिए कर समझी ने बिन मारी सुरता माले जो अभी

आख डारी कोई ना कयामा नहीं ने नहीं अणी नहीं दान ए घायल की धूमारू पांजरू नहीं तो गई छे यारम पार पोकारी कहूं छुप्राणिया नुगरा से मकर जो ने ए बेड़ी मजे जो बुडवा मारी बेड़ी ने उतारो

सतगुरु श्याम बड़िया ने जुगते जादव वीर ने ए मन पत्थर हता ते पानी करियाने कजा छ निरु भेड़ा नीर पाई लागू करी भमने ने चल पान्यो दास ए रामदास वचने मुरदास मैला मारा गुरु ने बतायो